बचू लोल बचू सारू बचू नौ सदा गुल बचू लोल बचू सारू बचू नौ सदा बाहर घुमन।